आपका जीवन है, और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, चिंतन में लगाइए, नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन है, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं, उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत उल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है, अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते, ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता, तभी समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गोविंद, भज

फिर कहते मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मैं उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन, करिए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। पर झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं। और संतों का सिद्धांत है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा भाई संसार से सुख की आशा कैसे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने

धन बलि, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं। झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सोचित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरण झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नैन गए और श्रवण हूं, और गए मुख थी लटी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी ना करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तब विषय में रुचि के। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती थी। क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती। इस बड़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का, और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का उनका काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार

सही, जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है। भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज को भी करना है, और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, रत्ती लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट नए सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है, रुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ ले या कभी समझिए, सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है, अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है, विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि ये अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भाग ले जाता है मन को, ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है। पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है, कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है। बीच में कह देता हूं, स्मरण करा देता हूं कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए, तो करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रियां आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए अंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवा अवस्था दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव जो अरिहू ना कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता, बोले केशव जो अरिहू ना कराही। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है।

वही होगी, इसलिए काल। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं, अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा, मूंड मुंडाए की लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ही है, हाथ में जपकी माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

रिहै रुचै मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। हमें दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है। सहज संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने भ्रमित हुई है कि यह रुचै मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे, शास्त्रों पुराणों की कथाएं सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सब के लिए, हम सब की कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करें। रंच प्रेम में अपन पो हरत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजई जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेक पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभव नहीं करता है। मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मान, मन लाग्यो अति झूठ सो, तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, तो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, कितना क्षण भंगुर ये देह है। कलिकाल कुठार लिए फिरता नम्र है चोट, झिली ना झिली। इसीलिए कहा है हरि का नाम।

चलेरी रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक से भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है, नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो। इसलिए आज ये सुख का जो समय है, ये आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए, भजन करिए। और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं। और जो जो तन

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा थी, जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो, हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई इसका नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात कुछ सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन, आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक्के।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शिव महादेव
1: शिव महादेव।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका

0: The most powerful leadership tool you have is your own. You are listening the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening Radio Maharani Kut Hatke.
1: हाँ, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए. अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है. जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ. तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है. उनसे लड़ लो, झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में. बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट? सारा खेल यही है. अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे? आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर, ठीक है ना, दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगा. जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी. तो खुद से कैसे, समझ रहे हैं? यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है. ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है. अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर, उसको कैसे फेस करें. क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझिए ना. और एक्चुअल में बाहर बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो. अगर इस बात को हम समझ पाए तो आप चाहो तो अपने मन में बोल दो, अरे ये तो बन, आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा. जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो उसने मुझे ऐसा क्यों बोला. तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना. तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है. गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना. अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है. ऐसे ही होता है ना, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में. हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को. नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे, राइट. जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे. जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट. इसको ध्यान से समझ लो. तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी किया. तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं. कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10-20 रुपए वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं, 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए में ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं, नहीं है उनके लिए, वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। दी वेरी क्या कहूँ, मेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है, तब से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बड़ी है, अरे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तू हाँ कर दे। और उसने हाँ कर दी, ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो, अरे ये करो, बाइक ना लेटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे, लटाए गए और मैं खुद भी लेट गया। और पीछे वाला कहता है, यार मैंने क्या गलती की, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है। नहीं करे हैं तो वो करके, मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उससे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती है, आप इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, करी है तो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोल। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब, अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या है छोटी क्वालिटी है, डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल, मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना।
2: माय क्वेश्चन इज दैट What? How should one maintain mental stability of life and death?
1: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार

अगर तो उन्होंने मरना नहीं अब मैंने देखो कितने आराम से बोल जाता है, तो मैटर ना करें, समझ गए ना। वो इंसान जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना। आज हम खुद भी मर सकते हैं। बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होने होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बात। उसके अलावा आपके आस पास में अगर आप प्यार करते हो तब भी आपके ऊपर असर ना हो, और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। कहता है हो सकता है नहीं हो सकता है, सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए। मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब ये पॉजिटिव रहे, नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है, दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जाम्पल दिया था, एक रोल का एग्जाम्पल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, भी रहे हो गए, सब कुछ कर रहे हो, फेल हो रहे हो गए, सक्सेसफुल हो रहे हो गए, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो, गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा? आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजन क्यों गलत होंगे, जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसे आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा? एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे, उस गेम में डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना। खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है

अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है? आप बॉटल को देख रहे हो, बॉटल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है। तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है? क्लियर हो गया? तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को। अब इससे क्या होगा? देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स है, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। आपका गया क्या ये बताओ मुझे? आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे की अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है? जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले दिन में क्या 10वें लेवल पर पहुंच जाते हो? ऐसा नो। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पर नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल पर वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये जिंदगी के कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो गए? तब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना मत बोलो वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ। कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा, उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो? क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है। बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, इसको वर्ल्ड, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में

चिल्ली वो चिल्ली बन जाते, सोच ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है, और उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी उससे रिलेटेड है, बाहर जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है, सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में, चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है ये, धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो, बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो, आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, अलग पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है, अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए ये क्या होगा, बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी, बिजनेस में लॉस लग गया मान लो, क्या हो गया, खेल है, अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली, अरे मजा आ गया, खेल है, समझ रहे हो, यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे, वो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल जो आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में, साल पहले आज भी वैसे जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं आपको भी थका देंगे, लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे, समझ गए, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये खेल है, एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं, सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान, बहुत आसान है, अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना, मेरा पति है उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में सभी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है पार्ट ऑफ गेम, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ, ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ, इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, जानी जानी चाहिए, ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए, तो सॉफ्टवेयर भी गया हार्डवेयर भी गया, बचा ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है,

फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना। अब वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है। सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता। कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में लाखों सालों में रहेगी और नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा। समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू, इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल आए।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मुहार फूटने से अब काज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हर सिग्नल पर।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

शानदार स्ट्राइक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ। मॉर्निंग है और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों रहिए, देखा ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है, यदि आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आस पास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगी कुर्सी की बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए स्ट्रेक को मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए? किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है, इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता।
0: महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत की।
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जीनी।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: जैसा अपना हाल है यारों,
1: मेरा
0: सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
2: कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है। क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे। रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं।

स्वागत है मैं हूँ आर्जिन श्री आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। एक छोटे से एक छोटा सा जो बिना बोले सारी मन की बातें कह देता है और इसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये मानता है कि हग से स्ट्रेस कम होता है, मूड बेटर होता है और दिल थोड़ा और ज्यादा खुश हो जाता है और बस बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि अच्छे के लिए है। तो बस यही कहना चाहूंगी आज अपने फोन को थोड़ा सा साइड रख दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए और ठग दे दीजिए जाकर, फिर देखिएगा कि आपका मूड और आपका डे कितना अच्छा होने वाला है। साथ ही सुनते रहिएगा रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि ये लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महाराष्ट्र।

0: मोबाइल फोन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई, जबड़ों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक ही को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89 सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: होता।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: है जनाब एम्बुलेंस को रास्ता देकर जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं। सावधान रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जय

इडली सांबर डोसा डोसा जी मेरा तो फेवरेट है इडली सांबर डोसा एंड मैं कभी ही नहीं स्किप कर सकती इस ब्रेकफास्ट को। लेकिन सोचेगा जरूर कि एक आप इडली की तरफ देखे बिना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर भाई एक इंसिडेंट लेकर आई हूँ। और इंसिडेंट ये है कि बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर, इन्होंने एयरपोर्ट के कैफे से घी पोड़ी इडली ऑर्डर की, जिसका बिल इन्होंने लगाओ कि बहुत ज्यादा नॉमिनल होगा, लेकिन उसका बिल आया एक इडली का 315 रुपए। और जब इन्होंने ये बिल सोशल मीडिया पर दिखाया तो भाई बहुत ज्यादा ये वायरल होने के साथ साथ लोगों ने कंपेयर भी किया इस बिल को कि सिटी के जो दूसरे आउटलेट्स हैं वहां पर ये इडली कितने की मिल रही है। इन्हें आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर ये इडली सिर्फ 90 रुपए की मिल रही थी, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा। इसे अब सवाल ये उठाए कि क्या एयरपोर्ट फूड प्राइसिंग पर कोई कंट्रोल है किसी भी तरह का, या फिर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड करते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि एयरपोर्ट आउटलेट्स पर हमेशा रेंट सिक्योर होती है, इसलिए प्राइस भी हाई होता है, मान लिया इनकी बात। लेकिन भाई एक इडली 315 रुपए की, 150 भी नहीं, यानी कि आधा भी नहीं, भाई 4 गुना मिला है यहाँ पर इनको इडली खाने का। जिसे देखकर ट्रेवलर्स भी कह रहे हैं कि क्या करना, एक इडली जो वर्थ ही नहीं है इतनी महंगी, उसे आप इतना महंगा करके बेच रहे हो तो आगे से कौन ही खाना खरीदेगा। तो भाई आप हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और आपको इतना एक्सपेंसिव बिल पकड़ा दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजिए और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: really alag. Dehu, really listen. Kash, meri life mein bhi koi aisa hota. Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.
2: Life on Wheels. जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। एक तेज हॉर्न जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई, आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं अब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आप अपनी सांसों के लिए लड़ रही हैं जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

और भाई क्या हाल चाल है आपकी? बेहतरीन हाल चाल है ना, आपके बेहतर हाल चाल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आई हूँ मैं। आई नो जब मैं यहाँ पर आती हूँ आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो बस वही बातें करने आ गई हूँ। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस लेकर। सुबह 7 बजे आ गई थी, अभी फिलहाल बहुत सारी बातें कर रही हूँ आपके साथ। और बातें सोशल स्यापा फनी भी है लेकिन शॉकिंग भी है। ये कुछ लोग हैं जो प्यार से ना अपने लव्ड वंस को बाबू, सोना, जानू, मोटू ये सब नाम दे देते हैं। कहा जाता है कि इन नामों से उनका प्यार भी कभी ऑफेंड कर सकते हैं किसी को। बस यही हो गया है इस शख्स के साथ। टर्की से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है, एक ऐसा वायरल केस सामने आ रहा है जिस पर लोग ना बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं। इस इंसिडेंट में ये नाम बहुत ही प्यार से मोटी लिखा और उसे सेव कर लिया अपने फोन में। एंड जैसे ही पत्नी ने कॉल किया उन्हें उनके नंबर पर मोटी नजर आया, तो बस फिर क्या था, पत्नी चली गई कोर्ट, वहां पर कर दिया केस। और अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको पता है कि वो मोटा है, इसमें बताने की जरूरत क्या है। अगर कोई इंसान छोटा है तो उसको पता है कि वो छोटा है, फिर भी आप उसे जाकर बताते हो छोटी बोनी नाटी। अरे भाई क्यों करना। तो कह सकते हैं कि जिसको प्यार से छोटू मोटू कहते हैं ना, तो एक बार सोचेगा जरूर। और कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या कहा वो भी आपको बता देती हूँ। कोर्ट ने भी कहा कि भाई प्यार में मजाक ठीक है, पर इंसल्ट की एक लिमिट होती है जो कि बहुत सही। इंसान मोटा है और उसे हर कोई आके एक ही चीज कह रहा है कि कितना मोटा है, कितना खाती हो तुम, ये है वो है, तुम्हें तो कपड़े भी फिट नहीं होते। तो एक इंसान ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों से डील कर रहा होता है। एंड ऐसे में आप प्यार भी उसको उसकी कमियां दिखाकर जता रहे हैं तो वो कैसा प्यार है। यही लोग ठीक है कि इस गलती की मैं माफी मांगता हूँ और कंपनसेशन के लिए भी तैयार हूँ। और बस यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी मोटी नहीं कहूंगा तुम्हें। और रही बात प्यार से नाम देने की, तो जो तो खैर ये इंसिडेंट फनी हो सकता है लेकिन ये इंसिडेंट ना हमें एक लेसन देता है और लेसन बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमेशा संभाल के रखिएगा। चाहे फिर आप किसी को जानू कहते हो, स्वीटी कहते हो, क्वीन क्यों नहीं कहते हो, लेकिन भाई किसी को मोटू गोलू या धन्नो भाई की आपका लव आपको हार्ट अटैक देने पर आ जाए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मजाक कीजिए, लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला उस मजाक को वैसे नहीं ले सकता तो प्लीज हेल्दी मजाक कीजिए। आजकल हेल्दी मजाक भी कर सकते हैं आप लोग। और 89.6 FM। और बस आपके लिए छोटी सी वार्निंग थी कि कभी भी अपने लव्ड वंस को उनको किसी भी ऐसे नाम से मत बुलाइएगा जिससे वो ऑफेंड हो जाए। बाकी सब ठीक है, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है, इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महाराष्ट्र
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: सेफ रहो, फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

जब बस ट्रेवल की आती आते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं आपको ये बताना, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर बात की जाए ना ट्रेवल टाइम की, तो आजकल ना एक ट्रेंड बन गया, एंड ट्रेंड क्या है, एयरपोर्ट जाते समय चेक इन या फिर फ्लाइट के टाइम बोर्डिंग पास की फोटो हम लोग जरूर शेयर करते हैं। ये दिखाना, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आदत आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं रिस्क की, कि किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए बोर्डिंग पास की, तो आपने देखा होगा बोर्डिंग पास के ऊपर एक बारकोड में हिडन होती है आपके इम्पोर्टेंट डिटेल, जैसे कि आपका नाम, PNR नंबर, फ्लाइट डिटेल, सीट नंबर, इवन फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो देखा कितना डेंजरस है। तो एक बार जरूर सोचेगा कि जब कोड आप ऐसे ओपनली शेयर कर रहे हैं, अगर किसी एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी ट्रेवल डिटेल क्रैक की जा सकती है, और इतना ही नहीं पर्सनल डेटा मिसयूज हो सकता है, साथ ही आपका अकाउंट एक्सेस या फिर फ्रॉड का रिस्क बढ़ सकता है। सो माय डियर्स, की फोटो कभी शेयर ना करें, अगर शेयर करना ही है तो बार कोड ब्लर करें। जी वैसे भी आजकल ना एस्थेटिक का जमाना है, तो हम सारी चीजें ब्लर ब्लर रखते हैं, एंड साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड जरूर है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, सेफ ट्रेवल कर, स्मार्ट रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शर्मा को वनवी से बचा के रखो। हैकर्स मोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं और तुम शेडी लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा। रिकैलकुलेटिंग लाइफ, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना। ये देख के तो हन क्या, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: established.
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटल हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

रखा तो हो सकता है अकाउंट गॉन जी। बिल्कुल, वेलकम बैक टू रेडियो भारती। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। एक ऐसा पासवर्ड जो हमारे ना जाने कितने अकाउंट को सिक्योर रखा भी, जो अगर स्ट्रांग हुई तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट कोई नहीं छेड़ सकता, और जो अगर थोड़ी सी वीक हुई तो भाई टाटा बाय बाय। अगर बात करें सेफ्टी की तो डिजिटल सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही पॉसिबल। तो फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा बैंक अकाउंट, सब कुछ यानी कि सब कुछ एक छोटी सी चीज प्रोटेक्ट करता है, हमारा पासवर्ड। लेकिन अगर आपका भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है या फिर बना रखा है तो ये बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, समझ लेना कि आपका डिजिटल गेट खुला छोड़ दिया है आपने स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए। आएंगे, आपका डेटा उड़ाएंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक रियलिटी चेक। जब भी हम बहुत इजी सा पासवर्ड रखते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पासवर्ड के तौर पर रखते हैं ना, तो वो हैकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है गैस करना, और हमें लगता है कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं ना, हमारे जैसे न जाने कितने। एंड इसीलिए एक कॉमन पासवर्ड पाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बस यही बताने आई हूँ आज आपको कि किस तरह से आपको स्मार्टली अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई पासवर्ड ऐसा रखो जो आपको याद, जैसे कि मिक्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, एक काम जरूर कीजिएगा, आज के दिन अपना पासवर्ड चेक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरा पासवर्ड वीक है तो भाई तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया बॉडीगार्ड होता है। सो माय डियर लिसनर, अपने बॉडीगार्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है। बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई, आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देखकर आप पूरा कर सकते हैं अब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन 1.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या आपने कभी इस रूल के बारे में सुना है? आई नो आपने कभी नहीं सुना था, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार सुना है। वेलकम बैक टू रेडियो मानानी, मैं हूँ आर्जी अंशी, आपके साथ रहा शो लेकर आ गई हूँ रूल बताने वाली हूँ। और रूल कुछ इस तरह से, अपनी गर्लफ्रेंड के प्लेट का खाना ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है? कभी आपने सोचा ही ये चीज? देखिए भाई, मैं सिंगल हूँ तो मुझे कभी ये सुनने का सौभाग्य ही नहीं मिला है कि मेरी प्लेट से खाना के प्लेट में वही फ्राइज बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड की प्लेट से अगर आप ट्राई करते हो ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रूल के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही है इन दिनों बहुत सारी बातें, और सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, खाया हुआ खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। कि भाई उस खाने में ऐसा होता क्या है? और अगर बात करूँ ना साइंस की, तो साइंस ने इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से कन्फर्म किया है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब खाना इमोशंस शेयरिंग और, तो तब हम उस खाने को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके पीछे की बस साइंस इतनी सी है। तो जिस तरह से साइंस ने इसके पीछे की कहानी बताई है ना, वहाँ तो बस एक ही चीज समझ आती है कि प्यार की असली लैंग्वेज कभी कभी आई लव यू नहीं होता। मेरी समझ आया है कि इस टेस्टी फूड के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो ऑनेस्टली प्यार है। तो भाई ये बताइए, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी प्लेट से नहीं बल्कि दूसरों की प्लेट से खाना खाते हैं? प्लेट से क्यों नहीं खाते? तो भाई बता देना नेक्स्ट टाइम कि प्यार ही आपसे इतना है कि आपके प्लेट का खाना भी टेस्टी लगता है, वो टेस्ट मेरी प्लेट में कहाँ। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए, मैं रेडी हूँ। हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी समझदारी देखती है, इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे। आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी।
3: A road सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। क्विक रिमाइंडर,
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
5: कमाल तुम में,
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई, आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है। जनाब, एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी नाइट आउल हैं या फिर अर्ली बर्ड, बिकॉज आज ना मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पर। जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए क्या फायदा है और जो लोग जल्दी सो जाते हैं ना उनके बात क्यों। रेडियो महारानी मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाइट आउल और अर्ली बर्ड के बारे में। और अगर आप भी उन लोगों में से है ना जो रात के 2 बजे बोलते हैं बस 5 मिनट और फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि लेट सोने वाले कुछ लोग रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं भी आप इंटेलिजेंट बन सकेंगे। तो इसके पीछे का एक रियलिटी चेक है और रियलिटी चेक कुछ इस तरह से है। साइंस ये भी कहती है कि 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद दिमाग, मेमोरी और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप माय डियर लिसनर स्मार्ट बनना है तो सिर्फ लेट मत जगिए, अच्छी नींद भी लीजिए। और अगर आप लेट सोते हैं तो डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये ऑलरेडी साइंस प्रूव कर चुका है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता, बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। जनहित में जारी।

दो गल्ला सुबह 7 बजे आई थी और अब 10 बजने वाले हैं, तो गल्ला तो बहुत सारी कही है आपके साथ। अब फिलहाल ये बताने आ गई हूँ कि मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज जाऊंगी तभी तो है कल, सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी। डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
1: बहुत कम

0: को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। A road safety campaign by Radio Maharani.

0: There's something about.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। इस वक्त मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। बात की जाए क्योंकि तो 9800 से नीचे आता नजर आया। और आज तो सुबह उठे तो रिमझिम बारिश, कल शाम से ही बारिश का मौसम बना हुआ था। कल जहाँ थोड़ी गर्मी और उमस हुई थी, आज रिमझिम बारिश ने उस उमस को दूर भगाया है और पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। या देखिए फिर से एक अच्छा खासा मौसम बनाती नजर आई। बाकी शहर से बहुत चर्चा है, अगर क्या आऊंगा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार सी कहानी।

0: सिर्फ कद्र करते हैं, कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले अपनी सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

There's something about tonight, something very special, something about the way you move. इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शुरू, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, बेशक बारिश का मौसम आ गया, लेकिन जहाँ उमस भरी गर्मी के साथ साथ बुखार लोगों में रेगुलरली, जहाँ बच्चों की कोल्ड, सिर दर्द, ऐसी बातें जरूर सबके सामने आ रही है। अच्छा, हमें इस मौसम में सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि साफ वातावरण, सूखा हवादार रखें, घर में जो भी ऐसा सामान हो और बच्चों को धोने वाले चीज़ों से दूर रखें, खान पान का खास ध्यान रखें, बाहर तली हुई चीज़ें इस मौसम में ना खाएं। बच्चों के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी यही है, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो, कुछ जकड़न सी महसूस हो, बार बार खांसी होती है, तो डॉक्टर से थोड़ी सी भी आनाकानी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। और यही ट्राई कीजिए कि आप लोग इस मौसम में बाहर का तला भुना खाना कम से कम खाएं, बेस्ट तो ना ही खाएं, जिससे कि आपकी सेहत बनी रहे।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के गलियारों की। क्या हम लोग बात करते हैं शहर भर नहीं पूरे देश भर के गलियारों के, जिनेश्वर चांदी लेकर के आए हैं। भारत के राजा ने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत, इतिहास रचा। तो वही एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विजेता वेट लिफ्ट ज्ञानेश्वर वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। तो कल दो मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम आए हैं, तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि पूरे देश भर का गौरव बढ़ाते हुए नजर आई दोनों खिलाड़ी। बाकी ऐसे विचार ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: अभी करते हैं, सुनो
1: इंसान।
0: दिमाग खा जाते हैं।
1: बाबा बाबा,
0: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: हम अभी जिलायक।
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक सब दे दूंगा।
1: अच्छा,
0: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
0: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे, बाय। हेलो।

0: है रेडियो महारानी का
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके,
2: आप अपनी एंटिटी
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कैरेले आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद विद एक्सपीरियंस, और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी, यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली टच जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 5 हरियाणा, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे
1: वो।
0: यहां दोस्तों सिनेमा के गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन से नए गाने सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार हैं, जहां कहानियां आएंगी तो धमाल तो गानों के गा।

है, बेहतरीन एक्शन से भरपूर स्वैग सॉन्ग्स। यानी कि सिनेमा के पिटारे से लेकर के आए, लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारों में घुमाने से पहले, सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं ऑब्सेशन के बारे में। ऑब्सेशन के सीक्वल को लेकर माइकल जॉनसन ने कहा कि फिलहाल दूसरे पार्ट बनाने की कोई चर्चा भी नहीं है। बात की जाए कि सफलता के बावजूद भी अभी सीक्वल नहीं जता रही जा रही मेकर्स की ऑफर्स। ऑब्सेशन ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई करी और सदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ओरिजिनल हॉरर फिल्मों में इसका नाम। इस वजह से फैंस को लग रहा था कि इसका सीक्वल जल्दी आएगा, लेकिन जॉनसन के बयान के बाद यहाँ पे विराम लग गया। बात की जाए तो जॉनसन ने मजाक में कहा कि उनकी सीक्वल आइडिया में बियर के पेरेंट्स दिखने की क्या हुआ था बस, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा होने नहीं वाला, बीच के ऊपर कोई फैल चढ़ने। लेकिन थैंक यू सो मच कि ऑब्सेशन को आपने अच्छा खासा प्यार दिया, उम्मीद से कहीं ज्यादा। बाकी ऐसी भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा उस पहले।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्लेबैक। यहाँ सिनेमा के गलियारे में हम बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक बेहतरीन स्टार है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब पंजाबी सिनेमा में डेब्यू करते सोनम बाजवा होने की संभावना है। कहा नवाजुद्दीन एक गिप्पी ग्रेवाल बैक पंजाबी प्रोजेक्ट से अपना रीजनल डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म के सोनम को फीमेल लीड के तौर पर अप्रोच किया गया, हालांकि लगन नवाजुद्दीन का नाम फाइनल जरूर है। प्रोजेक्ट का टाइटल, जनर और रिलीज शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। नवाजुद्दीन के लिए हिंदी सिनेमा के बाद पंजाबी इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर होगा, खासकर क्योंकि वे पहले से अपनी एंट्रेंस सोनम के पोजीशन लीक होने की चर्चा

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा आएगी वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने। हाई स्पीड में गाड़ी ना, हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरुण सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: तो रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है
3: भाई? मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छूकप है, पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर फिल्म डॉन एक आर्चे। यहां दोस्तों बात करते हैं अब सिनेमा के गलियारे से हैवान की। अक्षय कुमार और सैफ की फिल्म हैवान के नए लुक्स और रिलीज डेट आ चुकी है। मेकर्स की फिल्म या थिएट्रिकल रिलीज डेट 11 सितंबर अनाउंस की गई। प्रियदर्शन की फिल्म है और जहां अक्षय और सैफ की लंबे समय बाद ऑन स्क्रीन रीयूनियन होने वाली है। कहा जा रहा है कि सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये कहानी स्टेक्स रखी गई है। इनके साथ और बहुत बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है जहां कहा जा रहा है इसका क्लैश सितंबर की कई सारी रिलीज कहानियों के साथ भी होने वाले मचाएगी, तो मतलब धमाल मचाएगी रहेगा। इसकी रिलीजिंग का भी इंतजार, बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक

लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

इसी गली के साथ एक बार फिर चला रहा हूँ लेटर शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर फिल्मी टॉनिक आरजे नेहा सिनेमा के गलियारों से एक और बढ़िया कहानी। ओची की बात की जाए तो माँ एंची बंगरम रक्तांचल सीजन 3 द ईस्ट। माँ एंची बंगरम की बात करें तो ईओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई रक्तांचल भी द फर्स्ट एप की बात की जाए सारी कहानियां अवेलेबल है। समंतर उत्प्रभु की कहानी से लेकर के बात यहां पे की जाए लखनऊ ड्रामा 2000 क्रांति प्रकाश झा और निकेतन धीर की प्रमुख भूमिकाओं काम वाली कहानी। ओटी प्लेटफॉर्म पर इन कहानी को लुत्फ आइए कि देखिए यार बिजी वर्ल्ड है तो हर किसी को जरूर स्क्रीन पर जाकर के मौका उपलब्ध है इनका देखिए कहानियों को और बताइए कैसी लगी आपको।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी
0: अभी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: हुआ, अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ठंड पै गई है, कार चलिए
1: नहीं पहले जब

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेयर शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं तमन्ना भाटिया की। रागनी 3 की शूटिंग शुरू होने और सबसे पहले तमन्ना फिल्म से डे 1 की कुछ तस्वीरें रागनी 3 की शूटिंग की शेयर करती नजर आई हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर शशांक घोष कर रहे हैं और इस फिल्म में तमन्ना इनके साथ जुनैद मेन लीड में जुड़े हुए। शुरुआती स्केड्यूल लंदन में शुरू हुआ और मेकर्स ने भी वहां के कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्स के साथ शेयर करते नजर आए। कास्ट में और कौन कौन होने तमन्ना का फर्स्ट लुक मोमेंट और लंदन शूट सोशल मीडिया पर आकर के फैंस के नए चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए। शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: झुमका।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हट के
4: रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे
5: राजू का है जापानी ये पतलून इंग्लिश
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
5: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
5: आवारा हूँ आवारा
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मॉनिक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेगर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फिल्मी फ्लेवर में जो कि कलंदर का। आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बॉलीवुड

कि वो एक्टर, एक एक्ट्रेस जिसने अपनी नेचुरल एक्टिंग, बोल्ड चॉइसेस और पावरफुल परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। ग्लैमरस रोल्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर चैलेंजिंग करेक्टर को पूरी ईमानदारी से निभाया। आज बात कर रहे हैं टैलेंटेड एक्टर्स हुमा कुरैशी की। जी हाँ, इंडस्ट्री से लेकर के ओटी प्लेटफॉर्म तक नब्बे भी सेलिब्रेट कर रही। एक ही कुछ इंपॉर्टेंट किरदार और कहानियों के बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ बढ़िया से गाने।

आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सफर है, मंजिल है मुश्किल, गिरने का डर है। लंबा सफर है, तेरी डगर है।

में जाता चक्के पे गाड़ी अपनी सवारी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े अगाड़ी।

रेड शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं सिनेमा के कलंदम में हुमा कुरैशी की, जहाँ दिल्ली के थिएटर से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। एक्टिंग के प्रति उन्होंने एडवर्टाइजिंग और ऑडिशंस के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। 2012 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर धमाकेदार डेब्यू किया, जहां प्लेक्स और ऑडियंस दोनों ने खूब सराहा। यहीं से उनका सफर एक मजबूत एक्ट्रेस के रूप में शुरू हुआ। हुमा कुरैशी ने हर तरह के किरदारों में अपनी वर्सेटाइलिटी दिखाई। बदलापुर, जॉली LLB 2, डहरानी जैसी कहानियों में किरदार निभा करके फैंस का खूब प्यार बटोरा। इनके बारे में और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करें, PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीजे सरकार।
1: तो अनुग्रह की मैंने शराब छोड़ दी
0: है। आप शराब में मदहोश रहते हैं?
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

इसी कहने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्म कैलेंडर में। आज बात हो रही है हुमा कुरैशी, उन एक्ट्रेस में से हैं जो हमेशा कॉन्शियस ड्रिवन सिनेमा को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रोल्स चुने जो अलग थे और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते रहे। कॉन्फिडेंस, स्ट्रांग और स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग की वजह से आज वो इंडियन सिनेमा की सबसे रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस में शुमार की जाती हैं। हुमा की कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है? 8, 9, 6 पर बाकी

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से साफ
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बचपन से ही गाती थी, लेकिन उसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना ही बॉलीवुड तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता। फिर भी एक दिन उसकी आवाज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महाराणा मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और ये कहानी है प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा का जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव म्यूजिक की तरफ था। तब ऋचा घंटों तक गाने सुनना और गाना पसंद करती थी। उनकी फैमिली ने भी उनके टैलेंट को जल्दी पहचान लिया। इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। लेकिन म्यूजिक की दुनिया, हजारों लोग सिंगर बनने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। ऋचा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पास टैलेंट था, लेकिन टैलेंट को सही मौका मिलना भी जरूरी था। उनकी आवाज को मजबूत बनाया। उन्होंने सिर्फ सीखने पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि गाने के इमोशंस को समझना भी सीखा। यही वजह थी कि उनकी सिंगिंग में एक अलग ही रूहानियत महसूस होती थी। जैसे जैसे वक्त बीता, ऋचा का सपना दिल बॉलीवुड थी, लेकिन मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करना इतना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि असली स्ट्रगल अब शुरू होने वाला है। और कैसे पहुंची वो मुंबई और कैसे रहा उनका स्ट्रगल, करेंगे इंसान। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: यार का तो पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चा।
1: यार उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लॉक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से। ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मुंबई आते हैं अपने सपने लेकर, लेकिन ज्यादातर सपने वहीं भीड़ में खो जाते हैं। क्या ऋचा शर्मा का सपना भी उनमें से एक बनने वाला था? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वो कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं ऋचा शर्मा की। म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऋचा शर्मा ने भी ऑडिशंस दिए, लोगों से मिली, और हर छोटे बड़े मौके को पकड़ने पर बिल्कुल आसान नहीं था। कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता, कभी अपनी आवाज को सही प्लेटफॉर्म मिलना, कई बार टैलेंट होने के बाद भी मौके नहीं मिलते, और यही सब ऋचा के साथ भी हो रहा था। वो लगातार रियाज करती रही। उन्हें पता था कि अगर एक बार भी सही मौका मिल गया तो उनकी आवाज लोगों के दिलों तक जरूर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उनकी आवाज को नोटिस करने लगे। उनकी सिंगिंग में क्लास फील भी थी, यही कॉम्बिनेशन उन्हें दूसरे सिंगर से अलग बनाता था। और फिर आया वो मौका जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी, एक ऐसा गाना जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कौन सा था वो गाना? अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा, बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं, उन्हें भी तो लगती होगी।
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा, जब आप हमें से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते, उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है। तो मम्मा, हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत दिगी मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं, उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बैल्कनी या टेरेस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी।

ओए मुन्ना, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

कभी कभी एक ही गाना किसी आर्टिस्ट की परमा के लिए भी वो पल आ चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना हर सिंगर का सपना होता है। ऋचा को जब बड़े प्रोजेक्ट्स में गाने का मौका मिलना शुरू हुआ था, तब लोगों ने पहली बार उनकी आवाज को सीरियसली नोटिस किया। उनकी आवाज में एक अलग शक्ति थी और हाई एनर्जी ट्रैक भी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया वो था उनका सोलफुल एक्सप्रेशन। जब ऋचा गाती थी तो लगता था कि वो सिर्फ लिरिक्स नहीं गा रही बल्कि उन्हें महसूस भी कर रही है। रेडियो स्टेशंस पर उनकी आवाज सुनाई देने लगी, म्यूजिक लवर्स उनका काम याद कर रखने लगे, और बॉलीवुड को एक ऐसी सिंगर मिल गई थी जिसके गाने में सुर के साथ इमोशन भी था। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ प्रेशर भी आता है, अब था अपनी पहचान को बनाए रखना, और ये काम और भी मुश्किल था। और कैसे उन्होंने फेम के बावजूद जमीन से जुड़ना सही समझा, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा 500 रुपए का घड़ा। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ मैं क्या, ATM हूँ, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

बहुत लोग सक्सेस मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन ऋचा शर्मा की पहचान सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की नहीं बनी। उन्होंने डिवोशनल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंसेस में भी अपनी अलग जगह बनाई। ये उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हर म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बदलते रहे, नए सिंगर्स आते रहे, लेकिन ऋचा शर्मा की आवाज़ की डिमांड बनी रही। इसका सबसे बड़ा रीज़न था उनका डेडिकेशन। आज भी वो रियाज को उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है जितनी कहिए। म्यूजिक सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, म्यूजिक उनकी पहचान था, और इसी वजह से आज भी उनकी आवाज़ में वही सिंसियरिटी सुनाई देती है जो करियर के शुरुआत में थी। लेकिन उनकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन अभी बाकी था। रेडियो महारानी 89.6 FM, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया। ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहते हैं टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

कुछ सिंगर्स गाने गाते हैं और कुछ सिंगर ऋचा शर्मा उन्हीं आवाजों में से एक है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं। आज जब ऋचा शर्मा का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक सिंगर को याद नहीं करते, वो एक सफर को याद करते हैं। एक ऐसा सफर जो टैलेंट, मेहनत और पेशेंस से बना है। फरीदाबाद की एक लड़की से लेख करने तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में स्ट्रगल था, इंतजार था, चैलेंजेस थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, म्यूजिक के लिए उनका प्यार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं हो पड़ते हैं, और जब टैलेंट के साथ डेडिकेशन जुड़ जाता है तो एक आवाज लाखों दिलों की आवाज बन जाती है। और जब भी ऋचा शर्मा गाती हैं तो उनके सुर सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वो सीधा दिल तक। उनका नाम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खास जगह बना के रखता है। ऋचा शर्मा एक आवाज, एक जज्बा और एक ऐसी कहानी जो हर देखने वाले को इंस्पायर करती है। तो ये थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम हैंडल और साथ में फेसबुक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है विशाल डडलानी की आवाज में फ्रॉम द मूवी ब्रदर्स, और इस गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और आज एक और कहानी आपको सुनाने आई हूँ, एक और बिजनेस टाइकून कैसे उसमें स्ट्रगल की जाती है, ताकि जितने भी हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इंस्पायर हो सके, और जहाँ भी रुक रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसी है जो शायद है, क्योंकि आज जब हर दूसरा इंसान स्टार्टअप फंडिंग वैल्यूएशन की बात करता है, तब कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि असली बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है। एक आइडिया से नहीं, एक डिग्री से नहीं। और आज की कहानी एक ऐसी ही सोच की है जो न लग्जरी में पैदा हुई, न पावर से, बल्कि सादगी और सेवा से। सोचिए जरा, 1800 के दशक का भारत, न इंटरनेट, न मॉडर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, और उसी दौर में एक बच्चा जन्म लेता है एक गरीब मारवाड़ी परिवार में। घर में ज्यादा कुछ नहीं, न पैसे की अबंडेंस, न रिसोर्सेज की भरमार, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक चीज बहुत। आज बिजनेस अनप्लग्ड में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में दौलत आई, लेकिन वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागे, जिसके पास सब कुछ हो सकता था लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ देने का साहस रखती है। जब आप ये जानते हैं कि ये इंसान सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा बल्कि देश के सबसे बड़े मूवमेंट का हिस्सा भी रहा। लेकिन अब हम किसी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो किसी को कंपनी खड़ा करना नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होना होता है, अपने वैल्यूज पर टिक के रहना चाहे हालात कैसे भी हो। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौट कर आऊंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: yes, yes. Say it again.
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत
3: उसे कह दो हाय हाय।
2: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाने का नाम है अनस्टॉपेबल और गाना है सिया की आवाज में, और इसी गाने के साथ स्वागत है। और मैं बात कर रही थी, स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा लेकिन वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। अब वक्त है उस नाम को लेने का जिनकी वजह से आज की कहानी हमारी बन जाती है, और उनका नाम है सेठ जमनालाल बजाज। हाँ, वही जमनालाल में जाना जाता है, लेकिन जिन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री से ऊपर नहीं समझा। 4 नवंबर 1889 राजस्थान के जयपुर रियासत का सीकर इलाका, एक गरीब मारवाड़ी परिवार, न विरासत में ग्राउंड। जमनालाल बजाज सिर्फ 4th कक्षा तक ही पढ़े हुए थे। आज के दौर में जहाँ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आइडेंटिटी बन चुके हैं, वहाँ ये फैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन जिंदगी ने उनके सामने। अब जमनालाल बजाज सिर्फ 5 साल के थे तब वर्धा के सेठ बच्छराज ने उन्हें गोद ले लिया। अब सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा अचानक एक बड़े घर का हिस्सा बन जाता है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सब कुछ उनके सामने। उनकी असली पहचान शुरू होती है, क्योंकि जमनालाल उस वेल्थ से इम्प्रेस नहीं हुए। उनके लिए पैसा कभी एंड गोल नहीं था, और यही वजह थी कि बचपन से ही वो दूसरों से अलग दिखते रहे। एक बार सेठ बच्छराज के परिवार लोग शाही कपड़ों गहनों में सजे हुए थे। जमनालाल से कहा गया कि वो भी हीरे पन्नों से जड़ा हार पहने, लेकिन जमनालाल ने साफ मना कर दिया। उनके लिए दिखावा हमेशा से ही बहुत अलग रहा था। ये छोटी सी बात इतनी हो गई, और 17 साल की उम्र में जमनालाल घर छोड़कर चले गए। बाद में इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर अपने पिता को लिखकर भेजा, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, तन पर जो कपड़े हैं बस वही पहने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपका एक पैसा, 17 साल का एक लड़का इतनी क्लैरिटी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रहा है। बाद में उन्हें ढूंढा गया, मनाया गया, वो घर लौटे, लेकिन मन से वो संपत्ति का त्याग कर चुके थे। और यही वजह थी, जब विरासत में उन्हें संपत्ति मिली तो इन्होंने उसे अपने लिए नहीं, उसको मालिक नहीं, ट्रस्टी मानते थे। और शायद यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो इन्हें एक नस्लेस नहीं बनाता बल्कि एक इंस्पिरेशन बनाता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे था उनका बचपन, उनकी एडुकेशन उम्र में सीख ली थी। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस ऑन।

ये है रेडियो महारानी का दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged और मैं बात कर रही हूँ सिर्फ अमीर परिवार में पले बड़े इंसान नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज को यूज नहीं क्वेश्चन करते थे। अब जिंदगी के इस मोड़ पर उनके सामने सब कुछ था,

ऐसा पहचान सुरक्षा, लेकिन इनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट था। इन्हें लग क्योंकि कम्फर्ट सवाल पूछने से रोक देती है और जमला लाल बजाज सवाल पूछने वालों में से थे। यहीं से उनकी थिंकिंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रही। इन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरे पास इतना है तो समाज के पास क्यों नहीं। यही वो फेज था जहां जमना लाल बिजनेसमैन बनने से पहले ह्यूमन बीइंग बने। उन्होंने अपने पैसे को पावर नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई और यही माइंडसेट इन्हें महात्मा गांधी के करीब ले गया। महात्मा गांधी से रिलेशन था वैल्यूज का, ट्रस्ट का और डिसिप्लिन का। गांधी जी ने इन्हें सिखाया कि वेल्थ का मतलब कलेक्ट करना नहीं, सर्कुलेट करना होता है। और यही से जमना लाल के डिसीजंस बदलने लगे। वो सोचने लगे कि बिजनेस अगर करना है लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट छोड़े। इनके लिए प्रॉफिट गोल नहीं था, आउटकम था। गोल था सेल्फ रिलायंस। यही सोच आगे चलकर बजाज ग्रुप की बैकबोन बनी। लेकिन अभी तक एक चीज मिसिंग है। सोच तो बन गई, वैल्यूज को स्ट्रक्चर कब मिला, ये आइडियाज एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट कब हुआ और बजाज सिर्फ एक नाम नहीं एक लेगेसी कब बना। कहानी बताऊंगी आपको, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट अब पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ, गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक। और अब बात करते हैं बिजनेस की। नो इमोशन, नो इंस्पिरेशन कोट्स, ओनली स्ट्रक्चर, डेटा और रियलिटी। जमुना लाल बजाज का नाम आज बजाज ग्रुप से जुड़ा है, लेकिन ये ग्रुप एक दिन में नहीं बना। 19 कॉटन ट्रेडिंग से शुरुआत की, रॉ कॉटन खरीदना, उसकी प्रोसेसिंग और फिर रीसेल। सिंपल बिजनेस, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, कोई लग्जरी नहीं, कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं। उस समय भारत में कॉटन सबसे ज्यादा कॉमन था। 1926 में इन्होंने बजाज स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल्स की नींव रखी और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हुई। अब ध्यान दीजिए, ये कोई ग्लैमरस सेक्टर नहीं था। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब हैवी कैपिटल, लेबर इश्यूज और स्लिम टर्म प्रॉफिट नहीं देखा। इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की। 1930s 40s में बजाज ग्रुप का फोकस रहा टेक्सटाइल, शुगर, पावर, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कंट्रोल एक्सपेंशन। हर बिजनेस फिजिकल एसिड बेस्ड था, नो ऑटो तब पिक्चर में ही नहीं था। टर्नओवर की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में एग्जैक्ट पब्लिक नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 1940 तक बजाज इंटरप्राइजेस सेंट्रल इंडिया में मेजर टेक्सटाइल एम्प्लॉयर बने। स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन शुरू की। 1960 से 1970 बजाज ऑटो का राइज हुआ, लेकिन वो चैप्टर जमुना लाल के बाद का है। जमुना लाल के टाइम तक बिजनेस का स्केल था ब्रांड नहीं, ये समझना जरूरी है। इनका फाउंडेशन था, फैक्ट्रीज थी, सप्लाई चेन्स थी, सिस्टम्स थे, और ये सब हाई रिस्क एनवायरनमेंट में बना। ब्रिटिश पॉलिटिक्स, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, लेबर अनरेस्ट और जीरो गवर्नमेंट बैकिंग, और अब तक एक अनकंफर्टेबल मशीन नहीं। मार्जिन थिन थे, ग्रोथ स्लो थी, रिटर्न स्टेडी था, फ्लैशी नहीं, और शायद यही वजह है कि बजाज ग्रुप सरवाइव कर पाया। लेकिन सरवाइवल इजी नहीं था, और क्यों इजी नहीं था, क्या स्ट्रगल्स। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित।

0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: के अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: सिपाही।
1: इंग्लिश इस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
3: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी 150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना दे।
4: चलिए सेफ रहो, फिशिंग हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंप 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चावल और उड़द की दाल जब मिलकर फर्मेंटेशन से गुजरती है तो सिर्फ टेस्ट नहीं बदलता, न्यूट्रिशन भी बढ़ जाता है। इसलिए इडली सुबह ब्रेकफास्ट में हर घर में खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, हेल्दी होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होती है।
1: डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, तेजी पुड़ी चे वाटला, फाइन है।
0: शायद इसलिए आयुर्वेद

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

और कल्चर गारवा का आज का सफर घूम रहा है इडली के चारों ओर। इडली के बारे में बात की, लेकिन इडली के अवतार के बारे में भी बात करेंगे। इडली की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में मिलती है, जिसमें से एक है रवा इडली, फिर दूसरी है बटर इडली,

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद

0: जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सो आर यू गाइज हैप्पी? नहीं नहीं, मैं पूछना इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मौसम सच में औसम हो गया है। सुबह सुबह उमस थी मगर अभी शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी है हर जगह। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का तहे दिल से रेडियो महारानी 89.6 पर। अगर ऑफिस से इस टाइम घर जा रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे ऐसे रास्ते चुनिएगा जहां आपको लगता है कि ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक जाम हर तरफ है। मैं अभी गूगल मैप के थ्रू देख पा रहा हूं, जहां जहां मेरी नज़र जा रही है वहां वहां मुझे रेड लाइन नज़र आ रही है। रेड लाइन का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और मौसम तो कुछ ऐसा हो ही गया है, और पता है आपको, लोग कह रहे जॉब जा रही है और जॉब ले ऑफ के बाद भी एक लड़की बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, कैसे? करेंगे इसके बारे में बात। एंड अगर इसी बीच आप लोग कहीं पर ट्रैफिक में अगर फंसे हैं या फिर आपको पता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है, जल भराव, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? नंबर है जी मेरा एक सिंपल सा, 9654896896। सिंपल सा नंबर, आपको सिर्फ चार नंबर याद करने हैं, 9654। बाद में तो हमारी फ्रिक्वेंसी है 89.6, तो 9654896896 ये हमारा नंबर है। इस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप लोग वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए। और हाँ, एक ना दिक्कत आती है लोगों को, वो है यूपीआई पेमेंट में। और यूपीआई पेमेंट करते वक्त काफ़ी बार लोगों की एक शिकायत होती है कि हमारा नंबर चले जाता है दूसरे इंसान के पास। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इसके बाद क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो अभी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है मगर होनी नहीं चाहिए थी, करेंगे उसके बारे में भी बात। तो ऑल टोटल दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से लेके ऑल ओवर इंडिया तक सारी बातें करने वाला हूँ, मगर उसी बीच गाने भी चलाऊंगा। तो उन्हीं में से ये गाना इमरान हाशमी की मूवी से आप सभी के लिए के पाजी की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

ये गाना आज के दिन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। सुबह हंसी तेरी, शाम हंसी है मेरी, तो शाम हंसी हो गई है, सुबह भी हंसी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उन लोगों की शाम हंसी नहीं है जो इस टाइम ट्रैफिक में फंसे हैं एंड मुझे सुन रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, अगर आप लोग ट्रैफिक में फंसे ना, तो आप लोग अकेले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में सब जगह जलभराव हो गया है। बहुत ही भारी बारिश इसको दर्ज किया गया है, मतलब मौसम विभाग की माने अगर तो। उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत ही भारी बारिश आई है और इसकी वजह से उमस से तो राहत मिल गई, गर्मी से राहत मिल गई, बट पानी भरा गया है बहुत सारी जगहों पे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब इसमें कोई नई बात है क्या? नहीं, अपने आप से पूछिए, बचपन से हम लोग इस चीज़ देखते आ रहे हैं। ऑल दो कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है कुछ सालों में, बट कंडीशन अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, तकलीफ दे रही है। क्या फ़ायदा उन लाखों की गाड़ियों में घूमने का जब सड़क ही गायब हो जाती है बारिश के बाद। खैर, अभी बता दूं आपको, मौसम विभाग का कहना है कि अभी कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी है दिल्ली NCR में, और बारिश की वजह से कई जगहों पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम हो रखा है। अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। लास्ट ईयर मैं और मेरा दोस्त दिल्ली जाने वाले थे, तो मैंने उसको बोला भाई एक काम करते हैं, मेट्रो से चलते हैं। तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, गाड़ी से जाएंगे। तो मैंने कहा चल एक काम कर, तू चले जा, मैं नहीं जा रहा। और वो चला गया, एंड किस्मत से उस दिन बारिश हो गई और वो दिल्ली से शाम को 5 बजे निकला था। एंड इमेजिन करो वो कितने बजे घर आया होगा वापस फरीदाबाद में। वो 5 बजे दिल्ली साकेत से निकला था और रात के 11:30 बजे वो फरीदाबाद पहुंचा है। सोचिए, 6-6.5 घंटे का ये ट्रैवल हो गया था सिर्फ। कितने किलोमीटर का रास्ता है, पैदल भी चलता तब भी 5 घंटे पहुंच जाता है, 6 घंटे उसको गाड़ी से आने में लगे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आज भी किसी के साथ ऐसा हो, और अगर आप लोग ट्रैफिक में कहीं फंसे हैं तो बताइएगा जरूर मुझे। नंबर है जी मेरा 9654896896। रेडियो महारानी के स्टैंडल पर भी आके आप लोग बता सकते हो, ताकि मैं बाकी सबको भी आगाह कर दूं कि इस रास्ते से नहीं जाना। फिलहाल खैरियत है ये गाने का नाम, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

क्या दोपहर में आप लोगों के पास भी NDMA की तरफ से एक मैसेज आया था? और NDMA की तरफ से एक मैसेज जो आया था उसमें लिखा था हैवी रेन इज लाइकली टू अकर एट फ्यू प्लेसेस ओवर फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नू, पलवल, रेवाड़ी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर जैसे ही मैसेज आया ना, उसके आने के बाद तुरंत ही बारिश रुक गई थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आज सुबह सुबह मौसम ने थोड़ी सी करवट ली। मुझे तो लग रहा था मैं सुबह उठूंगा और मुझे उठते ही बारिश देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ, बट स्टिल बारिश हुई। और फिर उसके बाद अगर मौसम की बात करें तो मौसम अभी थोड़ा बहुत खुला हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि रात के 2 बजे से फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। और अगर कल भी ऐसा ही हाल रहा तो फिर कल भी ट्रैफिक में आप लोग फंस सकते हैं। एंड साथ ही साथ बता दो आपको, ओल्ड अंडरपास पूरा जलमग्न हो चुका है, ग्रीनफील्ड का अभी मुझे कोई अपडेट आया नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं अपने फरीदाबाद में और किसी जगह की, तो जहां तक मैंने देखा था तो ना पानी जमा हुआ और तुरंत निकल भी गया था कई कई जगहों पर। मैं एग्जैक्टली नाम लूँ तो सेक्टर 21 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर पानी जमा हुआ और तुरंत निकला। फिर उसके बाद मैं NIT की तरफ गया, NIT में भी मैंने देखा कि वहाँ पानी नहीं जमा हुआ था। दैट्स वेल एंड गुड। बट जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पानी जमा होगा, बिल्कुल वहाँ पानी जमा हुआ, जैसे कि ओल्ड अंडरपास। तो ओल्ड अंडरपास बंद हो चुका है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो यार, हम लोगों को ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी लाइफ में, मतलब रूट्स चेंज करने पड़ेंगे। आप लोगों को अगर ऑफिस से घर जाना है तो आपको जो रेगुलर रूट है ना आपका, उसके हटके जाना पड़ेगा, क्योंकि आज काफ़ी सारे रूट्स पर ट्रैफिक होगा। और अगर आप लोग भी ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा नंबर पे 9654896896 पर। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: The master.

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तब से।
1: अगर आप लोग अभी अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं या फिर आप लोग कहीं मार्केट के लिए निकले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आप लोग एक काम कीजिए, अपना फ़ोन खोलिए और फ़ोन पे गूगल मैप्स डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि गूगल मैप्स की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और बता दूँ आपको, अपना पूरा सेक्टर 21 वाला रोड है जो बड़कल की तरफ जाता है, वो पूरा का पूरा जाम है। एंड मैं गोल चक्कर से बात कर रहा हूँ, अंकीर गोल चक्कर से पूरा बड़कल फ्लाईओवर तक पूरा जाम है। और ये अभी का नहीं है, ये दोपहर 3 बजे से ही यही हाल चल रहा है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ सेक्टर 15 से, अगर आप मेन मथुरा रोड की तरफ आते तो आप बहुत ईजिली आ पाएंगे, बट ओल्ड के अंडरपास के पास भी यही दिक्कत चल रही है, यानी कि ओल्ड के अंडरपास पे भी जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एंड अगर आप लोगों को सड़क पार करनी, मीन्स अगर आप NIT की तरफ से रोड क्रॉस करके सेक्टर 12 की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको नीलम फ्लाईओवर पर भी एक हैवी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अभी अवॉइड कीजिए, अगर बेवजह जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो फिर जा सकते हैं, बट हाँ वेल इन एडवांस आप लोग निकलिए घर से बाहर और टाइम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिए, बस यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, नंबर वही है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना, बारिश में शायद आपको अच्छा लगेगा।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जिन बच्चों ने तो दानों से बचा रहा है
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ.

0: हूँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करें हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आपके पास कोई लिंक आता है जिसमें बोलते हैं कि इस पर क्लिक कीजिए और आपको फ्री डेटा मिल जाएगा? फ्री डेटा एज इन आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा एक महीने के लिए फ्री इंटरनेट। और अगर आपके पास कोई लिंक आता है जिसमें बोलते हैं कि अगर आप ये लिंक 3-4 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो शायद आपको जूते मिल जाएंगे फ्री में, तो ऐसी लिंक्स पे क्लिक गलती से भी मत करना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं ऐसा सब कुछ होता है रियल में। मतलब हम लोगों के पास एक मेल आती है, हम लोगों के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हम लोगों के पास हो सकता है एक टेक्स्ट पे मैसेज आता है जिसपे बोलते हैं कि हाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप लोग फ्री में जूते जीत सकते हैं, फ्री में आप टूर जीत सकते हैं, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना। एंड इवन आजकल तो कॉल्स भी आनी शुरू हो गई है, मानते हो कि नहीं। लाइक मेरे पास अभी रिसेंटली एक कॉल आया जिस पर कह रहे थे कि सर हम लोग एक डिनर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपको और आपके पार्टनर को। मैंने बोला देखो पहले तो ऐसा है, जल पे नमक मत छिड़को, क्योंकि मेरे कोई पार्टनर नहीं है सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि मुझे नहीं जाना ऐसी जगह पर, क्योंकि वो लोग वहाँ पर आपको डिनर के लिए बुलाएंगे या फिर लंच के लिए बुलाएंगे और फिर वहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे। एंड सच बता रहा हूँ, उन लोगों की कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको हर तरफ से घेर लेंगे, आप कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस सकते हो। तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, देर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड, बस उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए इस मौसम की तरह। और मौसम ने तो अब करवट ले ली है, अब बारिश कल सुबह ही देखने को मिलेगी। वैसे अगर बाहर बारिश हो रही है, आपके एरिया में बारिश हो रही है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर है हमारा 9654896896। और वैसे भी ऐसे मौसम में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं ना मन में, तो आपको किसका ख्याल आ रहा है बताइएगा ज़रूर। मगर उससे पहले आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, ख्याल है। इस गाने का नाम तलविंदर की आवाज़ में रेडियो महारानी पर।

0: सुनो।
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
0: तो अर्ज क्या है?
1: अर्ज
0: करते हैं
1: इशान,
0: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
1: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
0: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
1: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आप

0: हाय
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है। कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Yo boys, I am singing song. Soup song.

0: रही थी।
1: कल मेरी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जो नोएडा से डेली ट्रैवल करता है फरीदाबाद के लिए। तो मैंने उससे पूछा, भाई लेट कैसे हो गया? तो उसने कहा, भैया बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है रोड पे। और बस पॉइंट ये था कि सारे लोग जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और जिनके पास जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो फिर ये जो सड़कों पर निकले हुए हैं, ये लोग है कौन? ये सवाल मन में आया जस्ट। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो शाम हो गई है, 6:30 होने वाले ऑलमोस्ट, बट अभी जो मन में सवाल वो था यही कि जब सब लोग कह रहे हैं कि जॉब्स में ले ऑफ हो रहा है, जॉब सबकी जा रही है, एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, तो फिर ये सुबह और शाम को ट्रैफिक पे जो लोग खड़े होते हैं, जो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, वो लोग कौन है? मतलब उनके पास तो जॉब्स है ना। तो देखो मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि जॉब्स ले ऑफ हो रही है बिल्कुल, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी जॉब ही चली जाएगी। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो भी जॉब मिलेगी। चलिए किस्मत और किस्मत को साइड में रख देते हैं, मगर काबिलियत की अगर मैं बात करूँ, आप अगर अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करें, तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा। मगर ऑफिस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं मगर जताते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो बहुत कम करते हैं मगर दिन भर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखाता है ना, वो इंसान कामयाब रहता है अक्सर उस इंसान के मुकाबले जो इंसान मेहनत करके दिखाता नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये आज का ज़माना है, कलयुग है ये, और इसमें आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ में अचीव करना है तो काम करिए और उसको दिखाइए भी कि हाँ मैंने ये काम किया है, क्योंकि क्रेडिट आपका कोई भी इंसान ले जा सकता है। और इसी के साथ साथ जॉब अगर चली गई है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। स्टोरी तो नहीं है, ये रियल लाइफ की एक एग्जाम्पल है। कहाँ का है ये करेंगे इसके बारे में बात, मगर एक गाने के बाद एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को कि जॉब जाने के बाद एक लड़की ने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। अब इससे ज़्यादा जो सुनना है वो सुनिएगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बातें और गाने यूँ ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी हम लोग जैसा सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी ऐसे चले वैसे चले, ये हो जाता तो हम ये कर लेते, वो हो जाता तो हम वो कर लेते, मगर कभी कभी हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती और यही है जिंदगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गाना था तलविंदर की आवाज़ में पल पल, और इसी गाने के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक लड़की जिसकी अच्छी खासी जॉब थी, बहुत ही अच्छी, मतलब एक मार्केटिंग डायरेक्टर का रोल था, बहुत ऊंचा पोस्ट होता है ये, और फिर उसके बाद अचानक से उनकी जॉब चले जाती है। तो क्या उस लड़की ने सोचा था कि मेरी जॉब चली जाएगी? नहीं सोचा था उसने, बट उसने जॉब जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। एक्चुअली मैं जो मैं पूरी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है एक ऐसी माँ की कहानी जो US में रहती है और अभी इनकी रिसेंटली जॉब गई है, बट जॉब जाने के बाद भी इस लड़की ने काम करना नहीं छोड़ा, इसने फूड डिलीवरी शुरू कर दी। हाँ सच बता रहा हूँ, फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ पार्टनर राइडर बनी एंड इधर से खाना उठा के उधर डिलीवर करना शुरू किया। अब आप लोग बोल रहे होंगे अमेरिका में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, अगर फूड डिलीवरी के पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो सोचिए वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है। चलिए खर्चे और पैसों को साइड में रख देते हैं, बट इस लड़की ने अपना पूरा का पूरा अभी भी काम ढूंढना बंद नहीं किया है। अभी भी ये जब ये खाना डिलीवर कर रही तो भी खाना के साथ साथ काम ढूंढ रही है, एंड इसने पूरी की पूरी एक वीडियो डाली कि कैसे मैं शाम को पूरी की पूरी डिलीवरी का काम करती हूँ। और उसके बाद इसने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की, एंड यू नो इंस्टाग्राम हमेशा पता है सोशल मीडिया की पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा एंड काफ़ी सारे लोगों ने तो जॉब तक ऑफर कर दिए। नो डाउट इनकी पहले वाली जो सैलरी थी वो तो मैच नहीं कर पा रहे लोग, बट स्टिल उनको जॉब ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को कम मत समझिए। आप लोग रेगुलर उस पर वीडियोज़ बनाइए, रेगुलर उस पर वीडियोज़ डालिए, क्या पता कल को आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही पैसे कमाने का मौका मिल जाए। और चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना ब्रदर वी की आवाज में आत्मा रामा, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझे

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा मैं पढ़ता गया मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा मैं शून्य बना मैं शांत बना डिवोइस मैं देवांश बना मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

आपको मालूम है कि एक ऐसी भी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में आपको एक नया फ्लैट मिल जाएगा। अब आप लोगों के मन में भी लड्डू फूट गया होगा, लोग सोच रहे होंगे कि 10,000 में फ्लैट खरीदते 15 में बेच देंगे। नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तभी तो 10,000 में मिल रहा वहाँ पर फ्लैट। और ये इंडिया का मामला नहीं है, पहले बता देता हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। हाँ, मन में तो लड्डू फूटा ही होगा आप लोगों के, जैसे मैंने बोला कि 10,000 रुपये में पूरा का पूरा फ्लैट बिक रहा है और साथ ही साथ उसके अंदर पूरा फर्नीचर तक भी आप लोगों को मिलेगा, मगर अभी तक एक भी कस्टमर उन्हें नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली में रूस में ये पूरा का पूरा फ्लैट बिक रहा है और ये आर्कटिक वाले एरिया में है। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक्चुअली कोई ख़रीदार इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक रातें नहीं होती हैं। बहुत दिन तक दिन है तो दिन ही रहेंगे, रात है तो रात ही रहेंगी, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बर्फ़ में क्या ही काम हो सकता है। और जब एम्प्लॉयमेंट कम है तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लोग भी नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 0 से बहुत ज़्यादा नीचे तक चले जाता है, इस वजह से वहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो सिर्फ 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो, अगर इंडियन रुपीज़ में आप लोग कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में आपको पूरा घर मिल जाएगा। एक्चुअली में वहाँ पर जो घरों के अंदर हीटिंग वाला यूज़ करते हैं हीटर, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब वहाँ पर जॉब है नहीं, खर्चा ज़्यादा होगा तो फिर कौन रुकना चाहेगा ऐसी जगह पर, तो इसीलिए कोई भी नहीं रुक रहा है। अब अगर इंडियंस वहाँ होते तो इंडियंस तो एक जुगाड़ लगाते और अंगीठी अंदर गर्म करते एंड आराम से सो जाते, है कि नहीं। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिले 10,000 रुपये में पूरा का पूरा फ्लैट खरीदने का फुली फर्निश्ड, तो क्या आप जाओगे? मैं तो जाऊँगा बिल्कुल, 10,000 रुपये में फ्लैट खरीदूंगा, सामान सारा बाहर निकाल के वापस आ जाऊँगा इंडिया फरीदाबाद। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बज रहे हैं, उन्हीं में से ये गाना हर्ष भिखारी की आवाज़ में, बेबे बापू।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दे ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सोशल मीडिया पर आई हुई सारी चीजों पर विश्वास नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इस बात को गांठ बांध लो और अपने दिमाग में डाल लो अच्छे से, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, और हो सकता है कि वो आधी अधूरी जानकारी आपको पेश की जा रही हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जिस वीडियो की बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मैं भी शॉक हो गया, आई वाज लाइक ये सच में हो रहा है क्या। एक्चुअली वीडियो में दिख रहा था कि एक एक्सप्रेसवे है और वो एक्सप्रेसवे का नाम है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। उसमें ना जो साइड में दीवार होती है ना, तो कह रही थी कि वो थर्माकोल की बनी हुई है। एंड उस बंदे ने उसमें से छेद करके थर्माकोल निकाल के भी दिखाया, लाइक कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जो थर्माकोल जैसा दिख रहा था। अब जैसे ही ये वीडियो देखने को मिली तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा सभी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा तो रिसर्च तो करनी बनती है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने साफ किया कि ये वायरल वीडियो का सच क्या है। उन्होंने बोला कि ये थर्माकोल नहीं है, एक्चुअली ये एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन है। उन्होंने ये बताया, देखो जब सड़क निर्माण होती है ना तो उसमें तापमान के कारण जो फैलाव होता है उसमें सिकुड़न भी हो सकती है, तो दरारों को रोकने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर पता लगा लोग कह रहे थे कि हाँ अनपढ़ता की वजह से लोग ऐसी वीडियो बना डालते हैं। तो जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई उसने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं करी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जब कोई भी इंसान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए तो। एंड वॉट आर योर व्यूज अबाउट दिस, प्लीज डू शेयर इट विद अस। रेडियो महारानी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर है हमारा 9654896896। और हाँ, आपको फिर से बता देता हूँ कि कभी भी आपके पास कोई भी वीडियो आती है जिसमें बोलते हैं कि सड़क निर्माण में थर्माकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको बोल देना बेटा ये एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन है और कुछ नहीं। बस इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना चला देता हूँ। गाने का नाम है हाँ बोला मैं जहाँ मैं मस्ती में झूमूं। मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा तो सुनिए इसको ओरिजिनल आवाज़ में। हाँ बोला मैं।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दिन में बकवास है।
1: काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को अगर पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो वो इंसान ना हमारे नंबर का गलत इस्तेमाल करता है। यानी कि काफी बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है कि वो अगर किसी को पेमेंट करती हैं तो कुछ जो असामाजिक तत्व हैं लड़के, वो उन लड़कियों को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो ये बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग जब ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारा नंबर सामने वाले के पास चला जाता है। अब इसी के लिए NPCI ने तैयारी शुरू की है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने बोला है कि देखो जितनी भी यूपीआई पेमेंट होगी तो उसमें पूरा नंबर अब नहीं दिखेगा। एक्चुअली में उन्होंने यूपीआई ऐप से बातचीत कर ली है और बोला है कि अब से मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर, ये सारे के सारे मास्क हो जाएंगे। मास्क एज इन हमारा अकाउंट नंबर जो होगा उसके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे, जैसे हमारे डेबिट कार्ड में काफ़ी बार होता है ना, कुछ नंबर्स स्टार में कर दिए जाते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम अब आपका अकाउंट नंबर, यूपीआई नंबर और आपके साथ साथ मोबाइल नंबर, इन सब को मास्क कर दिया जाएगा जो कि एक क्रॉस या फिर एक्स के थ्रू दिखाया जाएगा और लास्ट के 4 नंबर ही, 4 डिजिट ही सबके सामने पेश होंगे। जैसे कि हमारा नंबर है 9654896896, तो हमारा सिर्फ लास्ट के 4 नंबर दिखेंगे यानी कि 6896। तो अब समझ आया आप लोगों को कि ऐसा आप लोगों की प्रिवेसी के लिए किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ अगर कोई भी असामाजिक तत्व मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए कि आपके पास किसी का भी नंबर आता है तो उसको कॉल या मैसेज करना शुरू कर देते हो। मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने तो बजी रहे, उनमें से ये गाना मनिंदर भट्टर की आवाज़ में ला रहे ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर आग ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: आज तो बारिश हो गई और बारिश जो हुई है उसने बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है। ठंडक हो गई है हर जगह और इस ठंडक के साथ साथ जल भराव भी हुआ है बहुत सारी जगहों पर। और जल भराव जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपने एरिया में जल भराव मत होने दीजिए, और अगर हो चुका है तो उसमें आप लोग थोड़ा सा पेट्रोल डाल दीजिए, बहुत है, उससे मच्छर पैदा नहीं होंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। थैंक यू गॉड था ये गाना धोनी भानुशाली की आवाज़ में। और मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिस दिन फरीदाबाद से एक भी डेंगू और एक भी मलेरिया का केस नहीं आएगा, तो क्योंकि देखो अब ये डेंगू और मलेरिया का सीज़न शुरू होने वाला है, शुरू हो ही चुका है। एडीज ग्रुप के मच्छर जिनकी पहचान ऐसी होती है कि ब्लैक एंड वाइट धारियाँ होती हैं उनके पैरों में, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप लोग एक एक मच्छर को पकड़ के देखोगे, बट घर के अंदर जब आप मस्कीटो रिपेलेंट मशीन लगाते हैं या फिर स्प्रे करते हैं तो मच्छर नीचे गिरते हैं, और मच्छर जैसे ही नीचे गिरेंगे ना तो उनको ध्यान से देखिएगा क्या उनके पैरों पर वो धारियां हैं, और अगर हैं तो वो एडीज ग्रुप के मच्छर है, वो डेंगू फैला सकते हैं, चिकनगुनिया फैला सकते हैं, और मलेरिया वाले मच्छरों की भी पहचान ऐसे की जाती है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर में जितना हो सके खिड़की और दरवाजे बंद रखें, घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल भी मत होने दो, क्योंकि पानी जमा होगा तो उससे दिक्कत आपको ही होगी अल्टीमेटली। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एडवाइस लेकर आते रहता हूँ आप लोगों के लिए। और हाँ देखो, मौसम अच्छा है ना आज का, तो मौसम में एक गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए जो आपको शायद अच्छा भी लगेगा, क्योंकि गाने का नाम है थोड़ी विस्की थोड़ी आइस। नहीं वैसा वाला नहीं है, ये है दिल टूटे आशिकों के लिए। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: थोड़ी विस्की थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: East Punjab.

0: क्या भी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

इसकी वजह से भी काफी तबीयत खराब हो सकती है लोगों की, और ऑलरेडी लोगों की तबीयत खराब चल रही है हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से ही इतना ज़्यादा उमस थी। उमस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी में हीट ट्रैप हो जाती है, बुखार आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। तो प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखिए। प्लीज़, मैं रोबोट की तरह बात करूँ क्या? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 7:50:30 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। मतलब ये है कि मेरा यहाँ से जाने का वक्त है, बट जाने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये अब बारिश वाला मौसम रहेगा इस हफ्ते तो, क्योंकि कल चांसेस दिखा रहा है 70% बारिश की, फिर परसों दिखा रहा है 60% बारिश की चांसेस, और मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि देखो ऐसा है कि कल तक येलो अलर्ट जारी है। तो प्लीज़ आप लोग इस बारिश में मत भीगेगा, तबीयत खराब हो सकती है, और अगर भीग चुके हो तो एक गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा मैं आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और वापस आएगी गीत विदेश के बाजियाँ, बहुत प्यारे भरे गाने लेकर आती है, अच्छे अच्छे गाने लेकर आती है, बातें भी अच्छी होती है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज़ आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी एंड सी यू, टाटा बाय, सायोनारा। और एक गाना आप सभी के लिए, मेरा फेवरेट है, इसलिए ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन चला देता हूँ। तो सुनिए इस गाने को, आज मतलब हफ्ते के दूसरे दिन, वो है इस गाने का नाम।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूँ तो किस से कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूँ गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्प्ररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिया। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ये आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं।

सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है, और जैसे वो हमसे दूर जाता है सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार, और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं, फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है, और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके,
4: लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली की।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहाँ एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ये भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
4: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाली एटीएम का उपयोग करने से बचें।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
5: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।
6: उम्र के साल कितने हैं, गिन गिन के क्या करना,
5: क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
6: उनकी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कभी लिया? ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: ए जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: नो ना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: आप मुस्कुराई मुस्कुराई
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।
3: मस्त बहा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
0: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने बागा

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।

0: तुम्हारा
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे। जा जा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 7 सौ श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट,